0: पर शुक्र है मैनू एक सोने का टुकड़ा था मिलिया, चलो यही सही है।
1: फिर थोड़ा समा इंतजार करन तो बाद दूजा दोस्त गुरु जी दी संकत तो वापस आया।
2: ओह,
1: ओ लंगड़ा रहा सी।
2: आए मेरा पैर।
0: की हो गया तैनू?
2: मैं गुरु जी दी संगत तो होके वापस पैदल चल के आ रहा सी, अते मैं तिलक गया ते मेरा पैर एक वड्डी कंडेदार झाड़ी ते पै गया। ओ मेरे पैर दे विच डूंगा खुब गई, माड़ी किस्मत आ मेरी। आए
1: ओह, दोवे ही बड़ी उलझन विच सन।
0: ऐस गाल दी कोई समझ नहीं लग रही। असी उस ईश्वर तो पुछया कि साडे चंगे जा माड़े कर्मा नाल कोई फर्क पैंदा है, अते कि ए ओदा जवाब है मैं बुरा कीता, मैनू सोना मिलया, जद कि तू चंगा कीता अते तैनू सट वज गई।
3: मैनू विश्वास है कि ईश्वर ने सही जवाब ही दिता होवेगा।
0: मैनू ए जवाब बिल्कुल भी समझ नहीं आया, इसदा की मतलब होया?
3: मैं भी मंदा हां कि मैनू भी इस दी समझ नहीं लगी। आपां नू गुरू जी कोल जाना चाहिदा है, ओ सानू इनू समझाण विच मदद करनगे।
1: अगले दिन ओह दोवें गुरु नानक देव जी कोल गए।
3: गुरु जी, मैं हर रोज तुहाडे कोल आउंदा हां, अते मेरा दोस्त भी हर रोज अपने परिवार नू यही दसदा है कि ओ तुहाडे कोल आउंदा है, पर इस दी बजाए ओह उस औरत कोल जांदा है जिसने इस नू झांसे विच पाया ते गुमराह कीता होया है।
1: उसने सारी स्थिति बारे विस्तार नाल दसिया, किवें उन्हां दोवां ने अपना अपना समा बिताया अते किवें उस नू सट वज गई अते उस दे दोस्त नू सुना लग गया।
3: सो असी दोवें उलझण विच हां, तुसी इस दे राहें सानू की संदेशा देना चाहुंदे हो?
1: गुरु जी ने अपनी डूंगी दूरदर्शता नाल समझाया कि अपनी पिछली जिंदगी विच चंगा दोस्त एक लुटेरा सी अते उसने लोकां कोलों बहुत कुछ लुटिया। उसने बहुत सारे झूठ बोले अते बहुत माड़े काम भी कीते। इस मौजूदा जिंदगी विच उसकी मौत कंडा चुभण करके लिखी हुई सी, पर उसने बहुत प्रगति कीती अते अपने समय की वरतों चंगे तरीके नाल कीती अते अपना मन उस ईश्वर दे पवित्र नाम नाल साफ कर लिया। ओ पवित्र संगत विच रच मिच गया अते अपने बहुत सारे माड़े कर्म तो लए। इस दे अपने उपर कीते कर्मा कारण इस दे कर्म इस हद तक ठीक हो गए कि मरण दी बजाए उस नू सिर्फ पैर ते ही सट लगी।
3: वाहे गुरु, गुरु जी मैं तुहाडा धन्नवादी हां। अते मेरा दोस्त?
1: गुरु जी ने अपनी डूंगी दूरदर्शता नाल फेर तो समझाउंदे होए कहा कि अपनी पुरानी जिंदगी विच माड़ा दोस्त एक भला इंसान सी। ओ दूजियां नाल अपना सब कुछ सांझा करदा सी। एक वार ऐस ने एक संत आदमी नू सोने दा एक टुकड़ा दिता सी। उस श्रद्धा अते साफ दिली कारण सोने दा ओ सिक्का कई गुणा ज्यादा वध गया। उस नू एक पूरा सोने दा कुजा मिलन वाला सी, पर उस दे अपने करनी कारण उस दे चंगे कर्म कट गए अते सोना कोले विच तब्दील हो गया। उस नू सिर्फ ओही एक सिक्का प्राप्त होया जो उसने पहला दिता सी। उना दोवां ने अपने आप नू निमाणा महसूस किया अते शुकर करन लई गुरु जी दे चरणा विच डिग पए।
0: वाहिगुरु।
1: साडे सब दे अपने कर्म हुंदे हन, कोई चंगी जां माड़ी किस्मत नहीं हुंदी। सानू जो भी अपनी जिंदगी च मिलदा है ओ अपनी पिछली करनी करके मिलदा है। अपनी कीमती जिंदगी नू बर्बाद ना करो, इस दी बजाय जिन्ना हो सके संत रूपी इंसाना दी संगत विच रहो। जे तुहाडे माड़े कर्म हन तां तुहाडी किस्मत माड़ी हो जावेगी, जे तुहाडे कर्म चंगे हन तां तुहाडी चंगी किस्मत बर्बाद नहीं होवेगी अते कोले विच नहीं बदलेगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे हन,
4: सुख दुख पूर्व जन्म के किए,
1: भाव सुख अते दर्द साडी पुरानी जिंदगी दे कीते कर्मां दे नतीजे हन।
4: सो जाने जिन दा तै दिए,
1: ऐस पेत नू ओही परमात्मा जानदा है जिसने सानू एह दुख सुख दिते हन।
4: किस को दोष दे तू प्राणी, सो अपना किया करारा है।
1: हे प्राणी, तू किसनू ए दोष दे सकदा है? ए तां तू अपने ही कीते कर्मा दा करड़ा फल भुगत रहा है।
5: सिकनेट दी कहानियां सानू बहुत अच्छी लगदियां ने। मैं अगली कहानी सुनन लई बहुत उत्सुक हां।

0: आज जपजी साहिब करो, मैं जाप साहिब करांगा। सिमर सिंह तुम्हें प्रसाद सवाइये करेंगे।
1: मैनू बहुत भूख लगी है, आओ छेती छेती पाठ करिए ताकि मैं नाश्ता कर सका।
2: कि मैं अरदास भी कर सकती हूँ?
0: आओ अनंत साहिब करिए।
1: मैं उच्ची उच्ची गावांगा।
2: मैं हर वेले कीर्तन सुनना पसंद करती हूँ।
0: वाहेगुरु जी का शुक्र है जिसने बास्केटबॉल दी खेड बनाई है। मैनू बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है।
1: शुक्र है मेरे कोल एवेजे बूट हन। मैं किन्नी उच्ची छाल मार सकता हाँ।
2: मैं शुक्र कर दिया कि मेरे कोल तुहाडे वर्गे वीर हन।
0: ओ वेखो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पिछे पंच प्यारे खड़े हन, आओ ध्यान नाल हुक्म सुनिए।
1: मैनू उना दिया वड़िया किरपाना बहुत चंगिया लग दिया हन।
2: एक दिन मैं भी पंज प्यारियां विच शामिल होवांगी।
0: इस शब्द विच एह सिख्या मिलदी है कि सानू वाहे गुरु नू सदा याद रखना चाहिदा है।
1: चलो सारे इकट्ठे शब्द गाइए।
2: मैनू तबला बजाना बहुत पसंद है।

0: ये कहानी पसंद आई होवे तो इस तरह हो रही वीडियो सब्सक्राइब करो।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.